0: है मूछे है
1: गाड़ी मूछे घोड़ा दाढ़ी दाढ़ी दाढ़ी स्टॉप दिस नॉनसेंस
0: जैसा कहता हूँ वैसा करो चलकर लकड़ी आई मीन लड़की देख लो
2: कोई जोर है
0: यस
2: जबरदस्ती है
0: यस इट्स माय ऑर्डर अटेंशन अबाउट डबल मार्च
3: आता आपल्या घरातील जुन्या नादुरुस्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तसंच पर्यावरणासाठी हानिकारक इतरही वस्तू जसं रोजच्या वापरातल्या प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या रिकामे खोके यांची सुयोग्य पद्धती

0: नवीन सुरुवात नव्या स्वप्नांसाठी, विधवा, घटस्फोटित परित्यक्ता महिला आणि युवतींसाठी विश्वास बँकेची विशेष स्वरोजगार कर्ज योजना। साडी व्यवसाय, ब्युटी पार्लर, गृहउद्योग, हॉटेल व्यवसाय आणि इतर उद्योगांसाठी 25 लाखांपर्यंत कर्ज सुविधा। अधिक माहितीसाठी संपर्क प्रेमचंद तायडे 9604179861 किंवा गणेश सोमवंशी 8380165 08। विश्वास बँक, तुमच्या यशाचा आधार।
1: नमस्कार, मी प्रमोद पुराणिक, गुंतवणूक सल्लागार। तुम्ही ऐकतात अर्थविश्व, रेडिओ विश्वास 90.8, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
2: मैं आपका स्वागत करता हूँ, सीमंत शुक्ला जी, CEO क्वांटम AMC, आज नासिक में हमारे यहाँ मुलाकात देने के लिए आए हैं और नासिक के जो निवेशक है उनके तरफ से और रेडियो विश्वास के तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे जो श्रोतागण हैं उनके लिए आपको ये विनती करता हूँ कि आपकी जो नई योजना आप लेके आए जो 21 अगस्त से शुरू होने वाली है उसके बारे में हमारे निवेशकों को, हमारे श्रोता को थोड़ी बहुत जानकारी दो। क्वांटम म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी जानकारी दे दो। नासिक बहुत ही अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड में ग्रो हो रहा है और ये आपको उसका पता है, आपने जो फिगर पब्लिश किए वो फिगर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आपके म्यूचुअल फंड के बारे में और स्कीम के बारे में कुछ बातचीत करो हमारे श्रोताओं के लिए।
3: सो पहले तो धन्यवाद पुराणिक जी, जितना नासिक को आप समझते हैं मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन लैंडस्केप में तो कोई भी नहीं जानता होगा। और सभी श्रोताओं मेरा नमस्कार। खैर, नासिक आपको भी मालूम है और जिस हिसाब से नासिक की ग्रोथ हो रही है म्यूचुअल फंड में भी वो बहुत अलग ढंग से निकल के आ रही है, क्योंकि नासिक एक काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, जिसके देखते हुए हमने भी यहाँ पे अपना ऑपरेशन लोकेशन चालू कर दिया है। नासिक में अब क्वांटम म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉय काम करते हैं और नासिक का डिपॉजिट बेस करीबन 31,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है एज ऑन मार्च 26, और ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ मैं कहूँगा। जहाँ तक हमारे प्रोडक्ट की बात है, क्वांटम काफ़ी पुरानी कंपनी रही है और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए, 20 साल में सिर्फ 14 ही प्रोडक्ट हैं और हमारा ये 7वां इक्विटी का प्रोडक्ट होगा। अभी तक सिर्फ 6 इक्विटी के हमारे प्रोडक्ट हैं जो एक्टिव साइड में हैं। इस फंड में हमारी खासियत ये है कि हमारे जो दृष्टिकोण है मार्केट को देखने का वो बदलाव में अलग ढंग से देख रहे हैं। अधिकतर जगह पे ये फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका NFO 21 अगस्त को आ रहा है और 4 सितंबर को ये बंद होगा। इसकी खासियत ये है कि ये सभी प्रकार के मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन देखने का मार्केट का दृष्टिकोण इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में थोड़ा डिफरेंट है। यूजुअली क्या होता है, जैसे हमारी बाकी स्कीम में भी फंड मैनेजर यूजुअली टॉप डाउन या बॉटम अप देखते हैं, हमारी भी जैसे स्कीमें अधिकतर वो बॉटम अप है। बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हैं, उसकी जाँच करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब वो किस सेक्टर से है, किस इंडस्ट्री से, वो सेकेंडरी हो जाता है, इसे कहते हैं बॉटम अप। दूसरी कहलाती है टॉप डाउन, जहाँ पे आप पहले ग्लोबल इकोनॉमी देखते हैं, इंडिया की देखते हैं, ब्याज दरें देखते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं, मुद्रास्फीति देखते हैं, उनको देखने के बाद आप सेक्टर चूज करते हैं, फिर सेक्टर में स्टॉक को लेते हैं, इसे कहते हैं टॉप डाउन। तो आप ऊपर से देखें फिर नीचे या नीचे से ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाएं। ये जो हमारा फ्लेक्सी कैप है इसमें हमारा दृष्टिकोण हॉरिजॉन्टल है, बेसिकली वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल है। हमारा कहना ये है कि एक किसी स्कीम में, किसी भी इंडस्ट्री में, अगर जैसे एग्जांपल लें, किसी भी कंपनी में एक सप्लायर होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर का ब्रांड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है और चैनल सेल्स का रिटेलर होता है। अगर अपन बात करें तो इन 4-5 जो सेगमेंट है, सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, आपका प्रॉफिट पूल बटा हुआ होता है। और भारत जिस हिसाब से तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसके कारण कई प्रकार के ये जो ब्लॉक्स हैं प्रॉफिट चेन के चेंज होते रहते हैं। कभी सप्लायर ज़्यादा कमाएगा, कभी हॉस्पिटल ज़्यादा कमाएगा, कभी फार्मा ज़्यादा कमाएगा, कभी केमिस्ट ज़्यादा कमाएगा। और हम इन जो चेंजेस हैं इनको सही टाइम पे पकड़ के उससे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो रादर देन किसी भी सेक्टर को या किसी भी कंपनी को टॉप डाउन बॉटम अप वर्टिकल उसमें देखते हुए प्रशांत देखते हुए अब हम इसे हॉरिजॉन्टल देखते हैं, और ये मेरे ख्याल से मार्केट में नए प्रकार की सोच का अनुभव है इस टाइप की चीज़, क्योंकि हम ऐसे ही नॉर्मली बॉटम अप चलाते हैं। बट उस स्ट्रैटेजी में भी हमने देखा कि हमारे कुछ फंड जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें जब हमने हॉरिजॉन्टल ढंग से इंडस्ट्री को देखा तो पाया कि हमने काफ़ी अच्छा पैसा इस तरह की गतिविधियों से बनाया है अपने इन्वेस्टर के लिए। तो हमने कहा क्यों ना इस नई सोच के साथ एक नया फ्लेक्सी कैप लॉन्च करें। हमारे फंड बहुत ज़्यादा नहीं है तो बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ हम लोग एनएफएल आते हैं, तो हमारा ये 7वां फंड है 20 एक्टिव साइड में। तो इससे ही आपको समझ आ जाएगा कि अगर जब तक हम लोग उसमें निपुणता नहीं ला पाए या हमारी समझ के परे हो तो हम शायद फंड लॉन्च नहीं करते। लेकिन हमें लगता है कि ये फ्लेक्सी कैप थोड़ा मार्केट के देखने के दृष्टिकोण में बदलाव के साथ आ रहा है, तो इसमें आपके निवेशक देखना चाहे तो जरूर देखें। नासिक के जितने भी जागरूक जनता है मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए एक अच्छा प्रभावशाली लॉन्ग टर्म में, लेकिन इक्विटी फंड है तो ऑब्वियसली इसमें इक्विटी की रिस्क है, तो थोड़ी लंबी अवधि के लिए करें। एनएफओ में भी अगर डालें तो कम से कम 5-7 साल का सोच के ही डालें।
1: आपके म्यूचुअल फंड के जो प्रमोटर है
3: जी,
1: और मैं एक ही लाइन में कह सकता हूँ कि आपका रिसर्च बहुत ही बढ़िया रिसर्च है
3: जी,
1: और प्रमोटर के बारे में उनका बाजार के बारे में क्या थिंकिंग है
3: जी,
1: इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी।
3: सर क्वांटम ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो श्री अजीत दयाल हैं, और अजीत दयाल जी 80 के दशक में अमेरिका से पढ़ाई करके आए। उस जमाने में लोग कम आते थे बट वो भारत आए, भारत के प्रति प्रेम है, और 1990 में पहला भारत का इंस्टीट्यूशनल इक्विटी चालू किया। उसके दौरान उन्होंने जार्डिन फ्लेमिंग जो यूके की ब्रोकिंग कंपनी है उनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया, काफ़ी चीज़ें की। उसके बाद वो अमेरिका गए, वो वैनगार्ड का जो वैल्यू फंड था उसमें हैंजबर्गर जी जो टेम्पल्टन के वन ऑफ द फाउंडर थे उनके साथ मिलकर उन्होंने फंड मैनेज किया, और कई प्रैक्टिसेस भारत में भी लाए। 2000 में हमने PMS उन्होंने लॉन्च किया, 2006 में म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, और अजीत जी की थॉट एक ही रही है कि इन्वेस्टर सबसे प्रथम, रेवेन्यू बाद में। और आज अगर अपन बात करें तो क्वांटम भी उन्हीं दिशा निर्देशों पर काम करता है कि कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं वो इन्वेस्टर के, निवेशक के हित के लिए कर रहे हैं। कई चीज़ें मार्केट में ऐसी की हैं जो समय से पहले और रूल बनने से पहले क्वांटम ने मार्केट में लाई, जैसे एंट्री लोड कभी नहीं लिया, एग्जिट लोड हमेशा NAV में जोड़ा, टोटल रिटर्न इंडेक्स 2006 से फॉलो कर रहे हैं। ये रूल बाद में बने सेबी के, लेकिन क्वांटम एज अ निवेशकों के हित में काम करते हुए सारी चीज़ें बहुत पहले से करता आ रहे हैं। अजीत जी का सोचना ये है कि भारत में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार अपन ओवर प्राइस पे कर देते हैं और इस चक्कर में पैसा नहीं बन पाता है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो हम लोग वैल्यू इन्वेस्टर रहे, लेकिन ये वाला जो फ्लेक्सी फंड है इसको हम लोगों ने नए उस पर लाए जिसको हम कहते हैं GARP, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, GARP। इसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ सेक्टर की वो कंपनियां लो जो अत्यधिक कॉस्ट ना दे, लेकिन ठीक ठाक कॉस्ट, थोड़ा महंगा मिलता है ग्रोथ इंडियन मार्केट में, बट ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस दे, ओवर प्राइस ना दे, तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सहूलियत भरा रिटर्न बना सकते।
1: आपके बारे में मुझे जो जानकारी है तो उसमें आपने MP में भी बहुत अच्छी तरह से काम किया है, उसमें आपने म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए काम किया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम किया, उनके बारे में और आपका जो उसमें कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा।
3: तो मैं सर खुद डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूँ, मेरे 26 साल के लंबे कार्यकाल में मैंने बैंकों में काम किया है, वेल्थ आउटफिट में काम किया है, इंश्योरेंस भी किया है, और करीबन 10-11 साल।
1: तो आपको दोनों साइड मालूम है?
3: तो दोनों साइड मालूम है, मैं इन्वेस्टर के भी पास रहा हूँ जब मैं खुद इन्वेस्टर हैंडल करता था। करीबन 25 साल में से मेरे 11-12 साल वेल्थ और इन्वेस्टमेंट और रिटेल बैंकिंग में रहे। MP में मैं पुरानी कंपनी में ARN कमेटी का मेंबर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे हमें ऐसे सवाल आते थे जिनसे लगता था कि डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें बनाई हैं उस दौरान, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लोगों को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखना चाहिए जितने भी म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये साइट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के नाम से। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बिजनेस रन करने और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि जैसे कि डिमाइस होता है, ट्रांसमिशन होता है, एग्जामिनेशन के हैं, DSC का डिक्लेरेशन कब देना है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें अच्छे रूप से दर्शाई है।
1: नासिक के म्यूचुअल फंड के निवेशक जो है
3: जी,
1: उनके तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और हमारे निवेशकों के
2: डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ भी अगर कठिनाइयाँ हो गई तो उसमें हम आपकी जरूर सहायता लेंगे और आप हमें सहायता करेंगे, ऐसा आपके बारे में पूरा विश्वास है।
3: इसी विश्वास के साथ विश्वास रेडियो, थैंक यू वेरी मच।
1: आणि श्रोते हो, अशाच नवीन नवीन आर्थिक विषयावर आपण पुन्हा बोलूयात। तोपर्यंत ऐकत रहा रेडिओ विश्वास 90.8, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।

0: विश्वास टाइम चेक टाइम चेक।
1: दुपारचा एक वाजलाय आणि तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
2: दिस आर इज ब्रॉट यू बाय विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक,
3: संचयात समृद्धी।
4: विश्वास बँकेची ATM सुविधा उपलब्ध, विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड नाशिक, संचयात समृद्धी।
5: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
6: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही, त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा। रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज।
7: तुमचं बिल या वस्तू, कानातले,
8: पहिल्या पगारातून आईसाठी,
7: संधीची पळी,
8: बाबांना पूजेसाठी,
7: मजुरी 30% सूट आहे, बघून घ्या। हमखास गिफ्ट हे घ्या, शुद्ध चांदीचं बेलाचं पान,
8: आजीला हवंच होतं, आता राखी पौर्णिमेला दादाला बघू।
7: आणखी एक 24 कॅरेटचं सोन्याचं बेलाचं पान किंवा सोन्याची राखी जिंकण्याची हमखास संधी सुद्धा आहे।
8: अडावतकरांकडे सगळंच साधलं गेलं। ऑफर कालावधी मर्यादित। अडावतकर ज्वेलर्स, अगुरा कॉम्प्लेक्स, कॅनडा कॉर्नर, नाशिक।
9: दिल ने पुकारा प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कविताएं सुनेंगे। ये कविताएं बंगाली में लिखी गई है पर इसका अनुवाद किया है गीतकार गुलजार ने। तो आज के कार्यक्रम में कविता भी सुनेंगे और गीतकार गुलजार के कुछ मधुर सुहाने पुराने नगमे भी सुनेंगे। दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों, हर इंसान के मन में एक बचपन छुपा होता है। रविंद्रनाथ की ये सारी कविताएं एक बच्चे की जुबानी लिखी गई है। सचमुच कितने नादान होते हैं बच्चे, पढ़ाई करते तो हैं पर उन्हें खेलकूद ज्यादा पसंद होती है। पढ़ाई पसंद तो नहीं पर पढ़ाई का खेल जरूर पसंद है। दोपहर नाम की एक बड़ी ही प्यारी कविता है। ओ माँ, अब मुझको छुट्टी देने को बोलो, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं। तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है, बस कह दिया तुमने, किसी दिन यूं नहीं लगता दोपहरी में कि शाम होने लगी है। मैं आंखें बंद कर लूं तो बड़े आराम से मैं सोच सकता हूं कि सूरज जा रहा है पार खेतों के। मच्छेरन बूढ़ी भी तालाब से अब साग चुन कर जा रही है। घना होने लगा है अंधेरा बरगदों के पेड़ों के नीचे, तलैया का भी पानी काला दिख रहा है। सभी तो हाट से अब लौट आए हैं, किसानों की भी टोली खेतियों से लौट आई है। जरा सोचो, निकल आया है सांझ का तारा, जरा सा सोच लो शाम हो गई है। बताओ, रात में दोपहर हो सकती है तो फिर दोपहर में क्यों रात नहीं हो सकती।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म आंधी से, गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने और लिखा था गुलजार ने। दोस्तों, बच्चे कितने मासूम होते हैं, उनके शैतानी में भी मासूमियत होती है। न जाने बच्चे क्या क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या होता है, कितनी शरारतें होती हैं। एक कविता है जिसमें ये बच्चा लेखक पिता की तकरार अपनी माँ से करता है कि ये बाबा हर पल न जाने क्या लिखते रहते हैं और माँ कुछ बोलती क्यों नहीं। लिखने का खेल बाबा खेलते रहते हैं, बच्चे को लिखना भी खेल लगता है। बाबा बैठे पुस्तक लिखते रहते हैं खुद ही, क्या लिखते हैं मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उस दिन पढ़ के सुना रहे थे तुमको माँ, माँ सच कहना क्या कुछ समझी तुम, ये सब लिखने से आखिर क्या मिलता है। कितनी अच्छी अच्छी कविताएं कहानियां रोज सुनाती हो तुम, वैसा कुछ क्यों नहीं लिखते बाबा। दादी माँ ने बाबा को क्या राजा वाली कोई कहानी कभी नहीं सुनाई, या वो सारी भूल गए हैं। स्नान में देरी हो जाए तो कितनी बार बुलाने जाती हो, खाना परोस के बैठी रहती हो तुम, उनको वो भी याद नहीं रहता, सारा समय बस लिखना लिखना खेलते रहते हैं। मैं बाबा के कमरे में अगर खेलने जाऊं तो पाजी पाजी कह के मुझको डांटती हो, थोड़ा सा भी शोर करूं तो बोलती हो, देख नहीं सकते क्या बाबा बैठे हैं लिखते हुए। बोलो तो सच बोलो माँ, लिखने से क्या होगा। मैं बाबा के कागजों पर जब कलम दवात से क ख ग लिखता हूँ तो क्यों गुस्सा करती हो तुम, बाबा जब वही लिखते हैं तो तुम कुछ नहीं कहती। लाइनों वाले कितने कागज बाबा रोज खराब करते हैं, नाव बनाने को मैं एक उठा लूं तो कह देती हो कागज नष्ट नहीं करते। सादा कागज लिख लिख कर काले करने से क्या नष्ट नहीं होते, क्या लिखते हैं बाबा मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता।

दिल्ली पुकारा सुन रहे हैं दोस्तों, आज सुन रहे हैं गीतकार गुलजार के कुछ सुरीले मधुर नगमे। अभी इस प्रोग्राम में जो गीत आपने सुना वो था फिल्म दो दुनी चार से, गाया था किशोर कुमार ने, लिखा था गुलजार ने, संगीत से सजाया था हेमंत कुमार ने। दोस्तों आज सुन रहे हैं कुछ पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है गुलजार ने। एक कविता ऐसी है जिसमें पिताजी कह रहे हैं कि मैं खेल खेलना भूल गया हूं, इस कश्मकश से भरी जिंदगी में जीवन का अर्थ भूल गया हूं, जीवन जीना भूल गया हूं। बच्चू मेरे बच्चू, कितने खुश हो बच्चू तुम, मिट्टी में एक डंडी लेकर दिन भर खेलते रहते हो। हंसता हूं जब देखता हूं मिट्टी में अट्टा डंडी का खेल, और मैं खाता लेकर हरदम माथा मारता रहता हूं हिंद से और हिसाब को लेकर। सोचते हो क्यों झूठ मूठ के खेल में वक्त गवाता हूं, बच्चू रे बच्चू मैं भूल चुका हूं बच्चू पत्ती और मिट्टी का खेल। दौलत ढूंढता रहता हूं सोने और चांदी की डलियां, तुमको जो मिलता है उससे मन का खेल बना लेते हो, मैं जो मिलता नहीं वो ढूंढने में ही वक्त गवाता हूं। इच्छा में तैर के इच्छा ही में लौट के फिर से अपनी नाव बहाता हूं, इच्छा में तैर के इच्छा ही में लौट के फिर से अपनी नाव बहाता हूं।

पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म किनारा से, गाया था लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने और लिखा था गुलजार ने। दोस्तों, जिनके मधुर सुहाने पुराने नगमे सुन रहे हैं आज के प्रोग्राम में और कुछ ऐसी कविताएं सुन रहे हैं जिनका अनुवाद भी गुलजार साहब ने ही हिंदी में किया है। और एक कविता में माँ कह रही है लोरी, जैसे बच्चा जल्दी सोता नहीं है, किसने नींद चुराई है मेरे बच्चे की, कमर पे गागर रख के माँ ये पास के गांव पानी लाने ही तो गई थी। दोपहर का वक्त था, खेल का वक्त भी बीत गया था, बतके भी तालाब में ऊन रही थी, बरगद की छांव में गड़ेरिया छोरा भी अब सोया हुआ था, कुंज आमों वाले जोहड़ में ही चुपचाप खड़ी थी। उसी बीच निंदिया चोर ने बच्चे की आंखों से नींद चुराई, उड़ गई। माँ वापस आई, देखा बच्चा कुहनियों और घुटनों पर सारे घर घूम रहा है, किसने नींद चुराई है मेरे बच्चे की, बहुत जरूरी है ये पता लगाना, ढूंढना और उस निंदिया चोर को जंजीर में बांधना भी। शाम को झांक के बांसों के जंगल में फिर सरगोशियां सुननी होगी, जहां पे जुगनू रोशनी के कतरे बिखराते हैं, जो भी मिला उससे पूछना होगा निंदिया चोर कहाँ रहता है, जिसने मेरे बच्चों के आंखों से नींद चुराई है, हाथ लगे तो उसको पकड़ के सबक सिखाना चाहिए ना, उसका घोंसला लूट लूं मगर पता चले चोरी की नींद कहाँ रखता है, लूट लूं वो नींद और फिर घर में ले आऊं, बांध के दोनों पंख उसके और नदी किनारे रख दूं, माछ पकड़ने को हाथ में सरकुंडा देकर कमल किनारे और बहते भौरों के पास। शाम की बाजारी जब निपटे, बच्चे माँ की गोद में लौटे, रात के सारे पंछी उसके कान मरोड़ेंगे, किसकी नींद चुराओगे अब, किसकी नींद चुराओगे। दोस्तों, कितनी प्यारी कविता है, मन की बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे शब्दों में बयां करती हैं यह कविता। सचमुच बच्चे जब सोते नहीं तो माँ को कितनी तकलीफ होती है, निंदिया चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए।

दिल ने पुकारा में अभी जो गीत आपने सुना फिल्म मौसम से, वो था भूपेंद्र और लता मंगेशकर ने गाया, संगीतकार थे मदन मोहन और लिखा था गुलजार ने। दोस्तों, कोई भी सदी हो युग हो, ये कविताएं समय के साथ चलने वाली कविताएं हैं, जो पुरानी नहीं होती, कुछ सिखा कर जाती है, बस किताबें पढ़ते रहनी चाहिए। और एक कविता है नदी पार, बड़ा जी है कि नदी के पार जाने का, जहां बांसों के खूंटों से बंधी है कतारे माझियों के कश्तियों की, किसान कंधों पे हल लेकर जहां उस पार जाते हैं, ग्वाला छोरा गाय भैंसे ले जाता है तैरा कर नदी में, जहां से शाम होते ही सब घर लौटाते हैं, वहां दिन रात गिदड़ बोलते हैं घने छांव के जंगल में, अगर तुम मान जाओ माँ बड़ा होकर बनूंगा मैं खैया के घाट का माझी, सुना है उसके अंदर है कई तालाब के पानी, भरे रहते हैं बारिश में, किनारे पर उन्हीं के घनी उगती है घास, वहीं आती है मानक जोर की जोड़ी, वहीं पर कीच मुर्गा भी आती है, निशा पंजों के रख जाती है गीली गीली मिट्टी पर, कई शामें कई दिन माँ खड़े रहकर इसी कोने में छत के बड़े ही मन से देखता है बिखरती चांदनी को, सफेद कांच के फूलों की खेती पर, अगर तुम मान जाओ माँ बड़ा होकर बनूंगा मैं खैया के घाट का माझी, चढ़ेगा सर पे जब सूरज निकल आएगा काफी दिन, मैं दौड़ आया करूंगा माँ लगी है भूख जोरों से, मुझे कुछ खाने को दो माँ, मैं फिर से लौट कर आया करूंगा माँ, अंधेरा होते होते मैं तुम्हारे पास ही घर में आऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं बाबा के जैसे विदेशियों में कहीं भी काम करने, अगर तुम मान जाओ माँ बड़ा होकर बनूंगा मैं खैया के घाट का माझी। दोस्तों, इतनी भावभीनी कविता है कि ऐसे बच्चे या ऐसे माँ बाप होंगे तो गांव से शहर जाने की, खुद की तरक्की करने की अपेक्षा नहीं रखते, ऐसी कविताएं विचार करने पर जरूर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, बस किताबें पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो विश्वास, आपकी जिंदगी आपकी आवाज। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार, तब तक नमस्कार।

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: नमस्कार, मी प्रमोद पुराणिक, गुंतवणूक सल्लागार. तुम्ही ऐकतात अर्थविश्व, रेडिओ विश्वास 90.8, तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
1: मैं आपका स्वागत करता हूं. सीमंत शुक्ला जी, CEO क्वांटम AMC, आज नासिक में हमारे यहाँ मुलाकात देने के लिए आए हैं और नासिक के जो निवेशक है उनके तरफ से और रेडियो विश्वास के तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ. और हमारे जो श्रोतागण है उनके लिए आपको ये विनती करता हूँ कि आपकी जो नई योजना आप लेके आए जो 21 अगस्त से शुरू होने वाली है उसके बारे में हमारे निवेशकों को, हमारे श्रोता को थोड़ी बहुत जानकारी दो. क्वांटम म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी जानकारी दे दो. नासिक बहुत ही अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड में ग्रो हो रहा है और ये आपको उसका पता है. आपने जो फिगर पब्लिश किए वो फिगर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आपके म्यूचुअल फंड के बारे में और स्कीम के बारे में कुछ बातचीत करो हमारे श्रोताओं के लिए.
2: सो पहले तो धन्यवाद पुराणिक जी. जितना नासिक को आप समझते हैं मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन लैंडस्केप में तो कोई भी नहीं जानता होगा. और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार. खैर, नासिक आपको भी मालूम है और जिस हिसाब से नासिक की ग्रोथ हो रही है म्यूचुअल फंड में भी वो बहुत अलग ढंग से निकल के आ रही है क्योंकि नासिक एक काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जिसके देखते हुए हमने भी यहाँ पे अपना ऑपरेशन लोकेशन चालू कर दिया है. नासिक में अब क्वांटम म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉय काम करते हैं और नासिक का डिपॉजिट बेस करीबन 31,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है एज ऑन मार्च 26 और ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ मैं कहूँगा. जहाँ तक हमारे प्रोडक्ट की बात है, क्वांटम काफ़ी पुरानी कंपनी रही है और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए. 20 साल में सिर्फ 14 ही प्रोडक्ट हैं और हमारा ये 7वां इक्विटी का प्रोडक्ट होगा. अभी तक सिर्फ 6 इक्विटी के हमारे प्रोडक्ट हैं जो एक्टिव साइड में हैं. इस फंड में हमारी खासियत ये है कि हमारा जो दृष्टिकोण है मार्केट को देखने का वो बदलाव में अलग ढंग से देख रहे हैं. अधिकतर जगह पे ये फ्लेक्सी कैप फंड है. इसका NFO 21 अगस्त को आ रहा है और 4 सितंबर को ये बंद होगा. इसकी खासियत ये है कि ये सभी प्रकार के मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा लेकिन देखने का मार्केट का दृष्टिकोण इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में थोड़ा डिफरेंट है. यूजुअली क्या होता है, जैसे हमारी बाकी स्कीम में भी फंड मैनेजर यूजुअली टॉप डाउन या बॉटम अप देखते हैं. हमारी भी जैसे स्कीम है अधिकतर वो बॉटम अप है. बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हैं, उसकी जाँच करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं. अब वो किस सेक्टर से है, किस इंडस्ट्री से, वो सेकेंडरी हो जाता है. इसे कहते हैं बॉटम अप. दूसरी कहलाती है टॉप डाउन, जहाँ पे आप पहले ग्लोबल इकोनॉमी देखते हैं, इंडिया की में देखते हैं, ब्याज दरें देखते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं, मुद्रास्फीति देखते हैं. उनको देखने के बाद आप सेक्टर चूज करते हैं, फिर सेक्टर में स्टॉक को लेते हैं. इसे कहते हैं टॉप डाउन. तो आप ऊपर से देखें फिर नीचे या नीचे से ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाएं. ये जो हमारा फ्लेक्सी कैप है इसमें हमारा दृष्टिकोण हॉरिजॉन्टल है. बेसिकली वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल है. हमारा कहना ये है कि एक किसी स्कीम में, किसी भी इंडस्ट्री में, अगर जैसे एग्जांपल लें, किसी भी कंपनी में एक सप्लायर होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर का ब्रांड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है और चैनल सेल्स का रिटेलर होता है. अगर अपन बात करें तो इन 4-5 जो सेगमेंट है, सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, आपका प्रॉफिट पूल बटा हुआ होता है. और भारत जिस हिसाब से तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसके कारण कई प्रकार के ये जो ब्लॉक्स है प्रॉफिट चेन के चेंज होते रहते हैं. कभी सप्लायर ज़्यादा कमाएगा, कभी हॉस्पिटल ज़्यादा कमाएगा, कभी फार्मा

0: भी केमिस्ट ज़्यादा कमाएगा, और हम इन जो चेंजेस हैं इनको सही टाइम पे पकड़ के उससे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो रादर देन किसी भी सेक्टर को या किसी भी कंपनी को टॉप डाउन बॉटम अप वर्टिकल उसमें देखते हुए प्रशांत देखते हुए अब हम इसे हॉरिजॉन्टल देखते हैं, और ये मेरे ख्याल से मार्केट में नए प्रकार की सोच का अनुभव है इस टाइप की चीज़, क्योंकि हम ऐसे ही नॉर्मली बॉटम अप चलाते हैं। बट उस स्ट्रैटेजी में भी हमने देखा कि हमारे कुछ फंड जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें जब हमने हॉरिजॉन्टल ढंग से इंडस्ट्री को देखा तो पाया कि हमने काफ़ी अच्छा पैसा इस तरह की गतिविधियों से बनाया है अपने इन्वेस्टर के लिए। तो हमने कहा क्यों ना इस नई सोच के साथ एक नया फ्लेक्सी कैप लॉन्च करें। हमारे फंड बहुत ज़्यादा नहीं है तो बड़े मुश्किल से हमारे यहाँ हम लोग एनएफओ लाते, तो हमारा ये सातवां फंड है 20 एक्टिव साइड में। तो इससे ही आपको समझ आ जाएगा कि अगर जब तक हम लोग उसमें निपुणता नहीं ला पाए या हमारी समझ के परे हो तो हम शायद फंड लॉन्च नहीं करते। लेकिन हमें लगता है कि ये फ्लेक्सी कैप थोड़ा मार्केट के देखने के दृष्टिकोण में बदलाव के साथ आ रहा है, तो इसमें आपके निवेशक देखना चाहे तो जरूर देखें। नासिक के जितने भी जागरूक जनता है मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए एक अच्छा प्रभावशाली लॉन्ग टर्म में, लेकिन इक्विटी फंड है तो ऑब्वियसली इसमें इक्विटी की रिस्क है, तो थोड़ी लंबी अवधि के लिए करें। एनएफओ में भी अगर डालें तो कम से कम 5-7 साल का सोच के डालें।
1: आपके म्यूचुअल फंड के जो प्रमोटर है
0: जी,
1: और मैं एक ही लाइन में कह सकता हूँ कि आपका रिसर्च बहुत ही बढ़िया रिसर्च है
0: जी,
1: और प्रमोटर के बारे में उनका बाजार के बारे में क्या थिंकिंग है इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी।
0: सर, क्वांटम ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो श्री अजीत दयाल हैं, और अजीत दयाल जी 80 के दशक में अमेरिका से पढ़ाई करके आए। उस जमाने में लोग कम आते थे बट वो भारत आए, भारत के प्रति प्रेम है, और 1990 में पहला भारत का इंस्टीट्यूशनल इक्विटी चालू किया। उसके दौरान उन्होंने जार्डिन फ्लेमी जो यूके की ब्रोकिंग कंपनी उनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया, काफ़ी चीजें की। उसके बाद वो अमेरिका गए, वो वैनगार्ड का जो वैल्यू फंड था उसमें हैंजबर्गर जी जो टेम्पर्टन के वन ऑफ द फाउंडर थे उनके साथ मिलकर उन्होंने फंड मैनेज किया, और कई प्रैक्टिसेस भारत में भी लाए। 2000 में हमने पीएमएस उन्होंने लॉन्च किया, 2006 में म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, और अजीत जी की थॉट एक ही रही है कि इन्वेस्टर सबसे प्रथम, रेवेन्यू बाद में। और आज अगर अपन बात करें तो क्वांटम भी उन्हीं दिशा निर्देशों पर काम करता है कि कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं वो इन्वेस्टर के, निवेशक के हित के लिए कर रहे हैं। कई चीज़ें मार्केट में ऐसी किए जो समय से पहले और रूल बनने से पहले क्वांटम ने मार्केट में लाई, जैसे एंट्री लोड कभी नहीं लिया, एग्जिट लोड हमेशा एनएवी में जोड़ा, टोटल रिटर्न इंडेक्स 2006 से फॉलो कर रहे हैं। ये रूल बाद में बने सेबी के, लेकिन क्वांटम एज अ निवेशकों के हित में काम करते हुए सारी चीज़ें बहुत पहले से करता आ रहे हैं। अजीत जी का सोचना ये है कि भारत में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार अपन ओवर प्राइस पे कर देते हैं और इस चक्कर में पैसा नहीं बन पाता है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो हम लोग वैल्यू इन्वेस्टर रहे, लेकिन ये वाला जो फ्लेक्सी फंड है इसको हम लोगों ने नए उस पर लाए जिसको हम कहते हैं गार्प, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, GARP। इसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ सेक्टर की वो कंपनियां लो जो अत्यधिक कॉस्ट ना दे, लेकिन ठीक ठाक कॉस्ट, थोड़ा महंगा मिलता है ग्रोथ इंडियन मार्केट में, बट ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस दे, ओवर प्राइस ना दे, तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सहूलियत भरा रिटर्न बना सकते।
1: आपके बारे में मुझे जो जानकारी है तो उसमें आपने एमपी में भी बहुत अच्छी तरह से काम किया है, उसमें आपने म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए काम किया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम किया, उनके बारे में और आपका जो उसमें कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा।
0: तो मैं सर खुद डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूँ, मेरे 26 साल के लंबे कार्यकाल में मैंने बैंकों में काम किया है, वेल्थ आउटफिट में काम किया है, इंश्योरेंस भी किया है, और करीबन 10-11 साल।
1: तो आपको दोनों साइड मालूम है?
0: तो दोनों साइड मालूम है, मैं इन्वेस्टर के भी पास रहा हूँ जब मैं खुद इन्वेस्टर हैंडल करता था। करीबन 25 साल में से मेरे 11-12 साल वेल्थ और इन्वेस्टमेंट और रिटेल बैंकिंग में रहे। एमफी में मैं पुरानी कंपनी में ARN कमेटी का मेंबर रहा हूँ, तो कुछ ऐसे हमें ऐसे सवाल आते थे जिनसे लगता था कि डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें बनाई हैं उस दौरान, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लोगों को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखना चाहिए जितने भी म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये साइट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के नाम से। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बिजनेस रन करने और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि जैसे कि डिमाइस होता है, ट्रांसमिशन होता है, एग्जामिनेशन के हैं, DSC कब डिक्लेरेशन कब देना है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें अच्छे रूप से दर्शाई है।
1: नासिक के म्यूचुअल फंड के निवेशक जो है
0: जी,
1: उनके तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और हमारे निवेशकों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ भी अगर कठिनाइयां हो गई तो उसमें हम आपकी जरूर सहायता लेंगे और आप हमें सहायता करेंगे, ऐसा आपके बारे में पूरा विश्वास है।
0: इसी विश्वास के साथ विश्वास रेडियो, थैंक यू वेरी मच।
2: आणि श्रोते हो, अशाच नवीन नवीन आर्थिक विषयावर आपण पुन्हा बोलूयात। तोपर्यंत ऐकत रहा रेडिओ विश्वास 90.8, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।

0: रेडिओ विश्वास
1: टाइम चेक
2: रात्रीचे 10 वाजले आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 FM. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
3: दिस आर इज ब्रॉट यू बाय विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक.
2: संचयात समृद्धी.
4: आता विश्वास बँकेच्या मोबाईल ऍप मार्फत इंटर ब्रांच ट्रान्झॅक्शन आणि नेट सुविधा अर्थातच NEFT उपलब्ध. ग्राहकांनी ऍप रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म नजीकच्या शाखेत भरून सदर सुविधेचा जरूर लाभ घ्यावा.
5: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
4: रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही. त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा. रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज.
6: नाशिककरांसाठी खास सुवर्ण संधी. ओरेकल ज्वेलर्स मध्ये आता सर्व सोन्याच्या दागिन्यांवर घडणावळ फक्त 9%.
7: होय, सोन्याची खरेदी करा आणि घडणावळीत होणार मोठी बचत.
6: ही खास ऑफर 15 ते 22 ऑगस्ट पर्यंत.
7: ओढेकर ज्वेलर्स, समाधानाची समृद्ध परंपरा. विद्या विकास सर्कल गंगापूर रोड आणि ओढेकर बंधू सराफ जव्हेरी सराफ बाजार नाशिक.
8: दिल ने पुकारा प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कविताएं सुनेंगे. ये कविताएं बंगाली में लिखी गई है पर इसका अनुवाद किया है गीतकार गुलजार ने. तो आज के कार्यक्रम में कविता भी सुनेंगे और गीतकार गुलजार के कुछ मधुर सुहाने पुराने नगमे भी सुनेंगे. दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8. मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ. दोस्तों, हर इंसान के मन में एक बचपन छुपा होता है. रविंद्रनाथ की ये सारी कविताएं एक बच्चे की जुबानी लिखी गई है. सचमुच कितने नादान होते हैं बच्चे. पढ़ाई करते तो हैं पर उन्हें खेलकूद ज्यादा पसंद होती है. पढ़ाई पसंद तो नहीं पर पढ़ाई का खेल जरूर पसंद है. दोपहर नाम की एक बड़ी ही प्यारी कविता है. ओ माँ, अब मुझको छुट्टी देने को बोलो, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं. तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना पढ़ना खेलूंगा. अभी दोपहर है, बस कह दिया तुमने. किसी दिन यूं नहीं लगता दोपहरी में कि शाम होने लगी है. मैं आंखें बंद कर लूं तो बड़े आराम से मैं सोच सकता हूँ कि सूरज जा रहा है पार खेतों के. मछेरन बूढ़ी भी तालाब से अब साग चुन कर जा रही है. घना होने लगा है अंधेरा बरगदों के पेड़ों के नीचे. तलैया का भी पानी काला दिख रहा है. सभी तो हाट से अब लौट आए हैं. किसानों की भी टोली खेतियों से लौट आई है. जरा सोचो, निकल आया है सांझ का तारा. जरा सा सोच लो, शाम हो गई है. बताओ, रात में दोपहर हो सकती है तो फिर दोपहर में क्यों रात नहीं हो सकती.

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म आंधी से, गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने और लिखा था गुलजार ने। दोस्तों, बच्चे कितने मासूम होते हैं, उनके शैतानी में भी मासूमियत होती है। न जाने बच्चे क्या क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या होता है, कितनी शरारतें होती हैं। एक कविता है जिसमें ये बच्चा लेखक पिता की तकरार अपनी माँ से करता है कि ये बाबा हर पल न जाने क्या लिखते रहते हैं और माँ कुछ बोलती क्यों नहीं। लिखने का खेल बाबा खेलते रहते हैं, बच्चे को लिखना भी खेल लगता है। बाबा बैठे पुस्तक लिखते रहते हैं खुद ही, क्या लिखते हैं मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उस दिन पढ़ के सुना रहे थे तुमको माँ, माँ सच कहना क्या कुछ समझी तुम, ये सब लिखने से आखिर क्या मिलता है। कितनी अच्छी अच्छी कविताएं कहानियां रोज सुनाती हो तुम, वैसा कुछ क्यों नहीं लिखते बाबा। दादी माँ ने बाबा को क्या राजा वाली कोई कहानी कभी नहीं सुनाई, या वो सारी भूल गए हैं। स्नान में देरी हो जाए तो कितनी बार बुलाने जाती हो, खाना परोस के बैठी रहती हो तुम, उनको वो भी याद नहीं रहता, सारा समय बस लिखना लिखना खेलते रहते हैं। मैं बाबा के कमरे में अगर खेलने जाऊं तो पाजी पाजी कह के मुझको डांटती हो, थोड़ा सा भी शोर करूं तो बोलती हो, देख नहीं सकते क्या बाबा बैठे हैं लिखते हुए। बोलो तो सच बोलो माँ, लिखने से क्या होगा। मैं बाबा के कागजों पर जब कलम दवात से क ख ग लिखता हूँ तो क्यों गुस्सा करती हो तुम, बाबा जब वही लिखते हैं तो तुम कुछ नहीं कहती। लाइनों वाले कितने कागज बाबा रोज खराब करते हैं, नाव बनाने को मैं एक उठा लूं तो कह देती हो कागज नष्ट नहीं करते। सादा कागज लिख लिख कर काले करने से क्या नष्ट नहीं होते, क्या लिखते हैं बाबा मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता।

दिल ने पुकारा सुन रहे हैं दोस्तों, आज सुन रहे हैं गीतकार गुलजार के कुछ सुरीले मधुर नगमे। अभी इस प्रोग्राम में जो गीत आपने सुना वो था फिल्म दो दुनी चार से, गाया था किशोर कुमार ने, लिखा था गुलजार ने, संगीत से सजाया था हेमंत कुमार ने। दोस्तों आज सुन रहे हैं कुछ पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है गुलजार ने। एक कविता ऐसी है जिसमें पिताजी कह रहे हैं कि मैं खेल खेलना भूल गया हूं, इस कश्मकश से भरी जिंदगी में जीवन का अर्थ भूल गया हूं, जीवन जीना भूल गया हूं। बच्चू मेरे बच्चू, कितने खुश हो बच्चू तुम, मिट्टी में एक डंडी लेकर दिन भर खेलते रहते हो। हंसता हूं जब देखता हूं मिट्टी में अट्टा डंडी का खेल, और मैं खाता लेकर हरदम माथा मारता रहता हूं हिंद से और हिसाब को लेकर। सोचते हो क्यों झूठ मूठ के खेल में वक्त गवाता हूं, बच्चू रे बच्चू मैं भूल चुका हूं बच्चू पत्ती और मिट्टी का खेल। दौलत ढूंढता रहता हूं सोने और चांदी की डलियां, तुमको जो मिलता है उससे मन का खेल बना लेते हो, मैं जो मिलता नहीं वो ढूंढने में ही वक्त गवाता हूं। इच्छा में तैर के इच्छा ही में लौट के फिर से अपनी नाव बहाता हूं, इच्छा में तैर के इच्छा ही में लौट के फिर से अपनी नाव बहाता हूं।

पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म किनारा से, गाया था लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने और लिखा था गुलजार ने। दोस्तों, जिनके मधुर सुहाने पुराने नगमे सुन रहे हैं आज के प्रोग्राम में और कुछ ऐसी कविताएं सुन रहे हैं जिनका अनुवाद भी गुलजार साहब ने ही हिंदी में किया है। और एक कविता में माँ कह रही है लोरी, जैसे बच्चा जल्दी सोता नहीं है, किसने नींद चुराई है मेरे बच्चे की, कमर पे गागर रख के माँ ये पास के गांव पानी लाने ही तो गई थी। दोपहर का वक्त था, खेल का वक्त भी बीत गया था, बतखें भी तालाब में ऊंध रही थी, बरगद की छांव में गड़ेरिया छोरा भी अब सोया हुआ था, कुंज आमों वाले जोहड़ में ही चुपचाप खड़ी थी। उसी बीच निंदिया चोर ने बच्चे की आंखों से नींद चुराई, उड़ गई। माँ वापस आई, देखा बच्चा कुहनियों और घुटनों पर सारे घर घूम रहा है, किसने नींद चुराई है मेरे बच्चे की, बहुत जरूरी है ये पता लगाना, ढूंढना और उस निंदिया चोर को जंजीर में बांधना भी। शाम को झांक के बासों के जंगल में फिर सरगोशियां सुननी होगी, जहां पे जुगनू रोशनी के कतरे बिखराते हैं, जो भी मिला उससे पूछना होगा निंदिया चोर कहाँ रहता है जिसने मेरे बच्चों के आंखों से नींद चुराई है, हाथ लगे तो उसको पकड़ के सबक सिखाना चाहिए ना, उसका घोंसला लूट लूं मगर पता चले चोरी की नींद कहाँ रखता है, लूट लूं वो नींद और फिर घर में ले आऊं, बांध के दोनों पंख उसके और नदी किनारे रख दूं माछ पकड़ने को, हाथ में सरकुंडा देकर कमल किनारे और बहते भौरों के पास। शाम की बाजारी जब निपटे, बच्चे माँ की गोद में लौटे, रात के सारे पंछी उसके कान मरोड़ेंगे, किसकी नींद चुराओगे अब, किसकी नींद चुराओगे। दोस्तों, कितनी प्यारी कविता है, मन की बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे शब्दों में बयां करती हैं यह कविता। सचमुच बच्चे जब सोते नहीं तो माँ को कितनी तकलीफ होती है, निंदिया चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए।

दिल ने पुकारा में अभी जो गीत आपने सुना फिल्म मौसम से, वो था भूपेंद्र और लता मंगेशकर ने गाया, संगीतकार थे मदन मोहन और लिखा था गुलजार ने। दोस्तों, कोई भी सदी हो, युग हो, ये कविताएं समय के साथ चलने वाली कविता हैं, जो पुरानी नहीं होती, कुछ सिखा कर जाती है, बस किताबें पढ़ते रहनी चाहिए। और एक कविता है नदी पार। बड़ा जी है कि नदी के पार जाने का, जहां बांसों के खूंटों से बंधी है कतारे माझियों के कश्तियों की, किसान कंधों पे हल लेकर जहां उस पार जाते हैं, ग्वाला छोरा गाय भैंसे ले जाता है तैरा कर नदी में, जहां से शाम होते ही सब घर लौट आते हैं, वहां दिन रात गिदड़ बोलते हैं घने छाओं के जंगल में, अगर तुम मान जाओ माँ बड़ा होकर बनूंगा मैं खैया के घाट का माझी, सुना है उसके अंदर है कई तालाब के पानी, भरे रहते हैं बारिश में किनारे पर उन्हीं के, घनी उगती है घास वहीं, आती है मानक जोर की जोड़ी वहीं पर, कीच मुर्गा भी आती है निशा पंजों के, रख जाती हैं गीली गीली मिट्टी पर, कई शामें कई दिन माँ खड़े रहकर इसी कोने में छत के, बड़े ही मन से देखता है बिखरती चांदनी को, सफेद कांच के फूलों की खेती पर, अगर तुम मान जाओ माँ बड़ा होकर बनूंगा मैं खैया के घाट का माझी, चढ़ेगा सर पे जब सूरज निकल आएगा काफी दिन मैं दौड़ आया करूंगा माँ, लगी है भूख जोरों से मुझे कुछ खाने को दो माँ, मैं फिर से लौट कर आया करूंगा माँ, अंधेरा होते होते मैं तुम्हारे पास ही घर में आऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं बाबा के जैसे विदेशियों में कहीं भी काम करने, अगर तुम मान जाओ माँ बड़ा होकर बनूंगा मैं खैया के घाट का माझी। दोस्तों, इतनी भावभीनी कविता है कि ऐसे बच्चे या ऐसे माँ बाप होंगे तो गांव से शहर जाने की, खुद की तरक्की करने की अपेक्षा नहीं रखते, ऐसी कविताएं विचार करने पर जरूर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, बस किताबें पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो विश्वास, आपकी जिंदगी आपकी आवाज। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार, तब तक नमस्कार।

0: बना के खा लक्ष्मी। तेरे लिए घास लाने के लिए देख मेरे पैर में।
1: स्वतः से वाहन, स्वतःचा व्यवसाय, ऑटो रिक्षा, टाटा छोटा हत्ती आणि इतर व्यावसायिक वाहनांसाठी विश्वास बँकेचे आकर्षक व्यावसायिक वाहन कर्ज, रुपये 25 लाखांपर्यंत कर्ज सुविधा, सोपी प्रक्रिया आणि जलद मंजुरी। अधिक माहितीसाठी संपर्क प्रेमचंद तायडे 9604179861 किंवा गणेश सोमवंशी 8380016508। विश्वास बँक, व्यवसाय प्रगतीची साथी।

0: करी थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन थाक दिनक दिन थाक तिनक तिन थाक।
1: आंख मिल जई है सजनिया से।